इस गल करके समाप्ति करा। दो तीन मिनट दसते रहते हैं। गुरु पंचम पातशाह जी को दो सिख आए, कहन लगे एक बड़ा भारा अवगुण आ गया, आप कृपा करो को जांदा रवे। पातशाह ने पूछा की अवगुण आए, कहन लगे रक्षना नू झूठ बोलन दी आदत पै गई। ऐसी किरत हो गई है, सच नू वसाना चाहते हैं रसना ते तां भी नहीं वसदा, आप कृपा करो किसे तरह भी ए झूठ जावे। पातशाह ने उपदेश दिता, झूठ तां स्वर्गां दे बूहे तो भी मनुख नू लिया के नरकां विच सुट देंदे, झूठ ना बोलिया करो। कहन लगे बड़ा मुश्किल है, कोई सुखैन तरीका दसो। पातशाह ने आख्या एक कागज कलम लो, जितने सारे झूठ हन ओ तुसी कागज ते लिख दे जाओ, एक बनाओ गुरुद्वारा धर्मशाल, बस एक कम करो सवेरे शाम गुरुद्वारे आके हाजरी भरो, सब ठीक हो जाएगा। ओ कागज ग्रंथी दे राही सानू भेज दें। कहंदे ने पहले महीने जिन्ने झूठ लिखे गए, बड़ा कागज भरिया सी, पर संगत विच जाके बैठन लग पे। जदों झूठ बोलन शर्म आवे लज्जा आवे। पातशाह ने कहा सी संगत विचों नागा नहीं करना। दूजे महीने होर कट गए ते जदों छेवा महीना आया गुरु की साथ संगत, जदों गुरु कोल चिट्ठी पहुंची ओदे विच एक भी झूठ नहीं सी। पातशाह ने वचन आख्या,

जो भी श्रद्धा नाल इस पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुणदा है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृत बाणी, जिस बाणी प्रथाएं

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा। ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ये बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता है। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गए से किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लै गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लै गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: मेरी पुकार सुन ले, माता तेरे दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे, तन गुरु अमरदास,
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

रखियो ग्रे पीतरो उठ पुहाओ को दौरियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जानियो।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिना तिना सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसदे ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगे।

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया के किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि पड़क उठे, पर उन्हां नूं की पता सी

जे हुक्म होया एक रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा।

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

मैं अपना आपा मिटा दिता, मैं मेरी मिटा दिती, फिर तेरे नाल मैं इस तरह रल गया। कनक जिस तरह सोने ते गहने का कोई फर्क नहीं, जिस तरह पानी ते पानी दे बुलबुले च कोई फर्क नहीं। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, कोई फर्क ही ना रह गया, मिट गया मैं तेरे विच रल गया। ते हुण ओ कुछ प्राप्त होया है, प्रगट्यो सहज प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा, बाजे अनत बाणी जीवन संगीत नाल भर गया, गुजे संगीत नाल भर गया, अंदर सहज आ गया है बाहर शोभा बन गई। प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा, बाजे अनहत बाणी कहो नानक नेचल घर बांधियो, गुर दी गुर की ओ बंधानी। गुरु ने ऐसा घर बन दिता है जेड़ा कदे डिगण डोलन वाला नहीं, कदे टहन वाला नहीं, ऐसे घर दा वासी मैनू बना दिता है, ऐसी अवस्था च पहुंचा दिता है। पर पहुंचिया कदों, जद मैं ए समझ लिया

थारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भवन

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके ना, मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके ना, मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुल हीन कह लो, गुण हीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, ओहदी शोभा भी कहदी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद यह जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा है, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

पाटिल जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु पे संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदो राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इना जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इना ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ताई आखिया